हर हर चरण हृदय उतार हिरदे च वसाने चरण वाहिगुरु सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्ज सफल हमारे। इस तो वड्डा कोई पुन नहीं, इस तो वड्डा कोई दान नहीं है, कोई पूजा नहीं होर। पुन दान पूजा परमेशर अजर कीर्ति गा रहे हो हर कीर्त। यह तत् कढ़ता सतगुरों ने, पंजवें पातशाह ने अज हुक्मनामे दे विच तत् कढ़ दिता। पहला लोकी कोई पुन दान करी जांदे सी, कोई पूजा करदे सीगे मंदरां दे विच बना लैंदे सी देवत्यां दीआं फोटोआं। पर सानू सतगुरों ने किन्ना सौखा दस दिता, कहिंदे पुन दान पूजा परमेशर। आ जिहड़ी तुसी कर रहे हो हरि दी कीर्ति, हर कीर्त साध संगत है, सिर करमन के करम सब तो उपर है। यह काम सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। इस तो कोई उपर निर्मल कर्म नहीं है, यह पुन है। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाए, वाह गुरु। इनू पुन किया, इनू दान भी किया, दाना सिर दान नाम दान। इस तो वड्डा कोई पुन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान नहीं। तो कहना की है, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये कीर्ति करनी, ये तत् कढ़ दिता पंजवें पातशाह ने अज हुक्मनामा साहब पढ़ के आए तुम। ये तत् है हर कीर्त साध संगत, संगत च बह के कर सिर करम नके करम, सिरे का काम। पर वड्डे भागां वाले मिलता है, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लैना। कई बार अपना संगत च आके भी नहीं बोलते, है ना। अपना इतों शुरू किया है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज। ये भी पंजवें पातशाह के बचन, आओ बचन फिर मनीए। हुक्म मनिया होवे, हुक्म है ना गुरबाणी, जे हुक्म मनिया होवे परवान तां खसमे का महल पास। जो गुरबाणी गुरु कह रहे करना पैना। आओ फिर हर कीर्त साध संगत है सिर करमन के करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लैण। ताडे भागां च लिखे होया कि तुसीं ये कीर्ति संगत च बैठ के गाउणी है।

गुरु सारे करियो गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर गम अपार। ये गुण गाउण नाल बड़े सुख मिलते हैं।

हर हर नाम हृदय उरतार हृदय और मन उदों बनता जो नाम वस जाता आ तुसी कोशिश कर रहे हो अखां बंद कर लेंदे हो मन जो उत्सरू पिया नेत्रां च बैठदा फिर एक हो के सुरती बन के ध्यान बन के चित बन के कन्ना च चले जाना उहदे विच हुण तुसी इह वसा रहे हो हर हर नाम हर हर चरण हृदय उरतारे ते सिमर नाल हुंदा है सिमर स्वामी वाहिगुरु कहिंदे कारज सफल हमारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे ये करन दे नाल गुण गावत अतुल सुख पाया सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे कित यहोजा सुख मिलना जेड़ा गिनती मिनती तो ताम अतुल हों तोले नहीं जा सकता गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे गुण कि गाए ठाकुर दे जेड़ा अगम अपार है वाहगुरु जी ने फिर तुम अंगीकार कर लिया जो मन निर्मल हो जाता सुख वेखो की मिलया ये अपने घर चले गया पर जांदा गुरमंत्र नाल आ जे गुरमंत्र नहीं कमाउंदे फिर नहीं जांदा घर सुख वसिया बाहर इन माया दे देश नूं गया किते माया देश आऊगा इत्थे भी सुखी रहेगा ते घर जाएगा अपने निज घर महल पावो सुख सहजे बौड़ ना होएगो ये फेरे बज जाणगे नहीं ते बड़े फेरे होए कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज मीन परंगा कई जन्म पंखी सरपोए ये फेरे मुकने नहीं हैं जे असी सतगुरां दा हुक्म नहीं मानते जे गुण नहीं गाते मन नूं निर्मल नहीं करते तो ये घर ही नहीं जाता लिखिया मन निर्मल नहीं दसवें द्वार भ्रम भ्रम आवे मूढ़ा बार बार वो निज घर दे विच जाता ही नहीं है जिथों इन्हूं नाम मिलना तो ये फिर इत्थे रह जाता अंत समय फिर इन्हूं जम कढ़दे ने लिखिया गुरबाणी जी कहते जिंद नमाणी कढ़ीए हड्डां को कड़काए लिखिया ना सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएंगे आप बोलते नहीं ये बोलना पैना सतगुरु कहते राम राम बोल बोल खोजते वडभागी वड्या भागा वाले ने जिहड़े बोल के सुनते ने अखां बंद करते मन सुनदा साडा कन्ना च बैठा वो फिर तुप जांदा जे मन सोचा ही सोची जांदा तो मैला हो जांदा ये दो काम करदा सिमरन करदा रहिंदा मन सिमरन कहदा करदा माया दा सोचां दा थॉट्स जिहड़े रात नूं सुपने बन जांदे ये इहदा काम है ये सिमरन छड्डदा नहीं गा मन जे एहो सिमरदा रहा तो अंत समय की हाल होना इहदा सतगुरु कहिंदे ने अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे कम्मां कारां च ध्यान रह गया ऐसी चिंता में जे मरे मरना तो सारे ही कहिंदे प्रेत जून मिलनी है सर्प जून वाल वाला उतरे सर्प जून अंतकाल जे मंदर सिमरे वड़े वड़े घर लै ले सिमरन किया नहीं ध्यान उन्हां च रह गया ये नहीं हैगा वड्डे घरां च नहीं रहना कहते जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर तुसी जिहड़े मर्जी वड्डे वड्डे फार्म हाउस लो पर उसे संगत होवे ना जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे सो अस्थल सोहण चवारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जी इन्हू भी नगर कहा कहते जपदा नहीं तो उजाड़ च उत्थे भूत वसदे फिर भूत वसे तीन माह भूत की है पांच चोर जेड़े ये फिर घर जन लड़ाई जाते हैं एक दूजे के वो पुट दे वाल फिर भूत वाला काम है ना कल युग में धड़े पांच चोर झगड़ाए तो जे आप इन्हों वरज के रखिए
ਤੇ ਵਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਢੋਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਵਾ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਚ ਧਾਰ ਕੇ, ਦਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਸਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਧੋਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ।

उपदेश गुरु जिहड़ा वाहिगुरु है ना, ये पांच प्यारे उपदेश करदे सानू। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, हर हर की वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करे, कहते यदा इनान हो जाएगा मन, सब किल विख पाप दोख लै जाए। इना करके फिर तुम नितनेम करना, पहला मन का इनान करा सिमरन के नाल, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर। आप गुरबाणी अनुसार चलना हों, जो गुरबाणी गुरु जी कह रहे हैं, है ना। गुरु रामदास जी नूं तुसीं सारे रब मानते हो, आपां पढ़दे हां ना, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजण हारे धारे, सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कार। ते पार ब्रह्म दी गल मानते नहीं, अटल अथा अतोल तू, ये सारे वाहगुरु के गुण है। तेरा अंत ना पारा वारिया, जिनी तू सेव्या भाव कर, जिन्होंने गुरबाणी कमा लिया सेत तो पार उतारे, लभ लोभ काम क्रोध मोह इतों खेड़ा छड़ा दू, गुरु रामदास जी छड़ा देंगे, मार कढ़े तो दसा परिवार। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया, नानक तू लैना तू है गुर अमर तू बिचारे, गुर डिठा ता मन सादा, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने। तो गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जिहड़ा आपां वचन पढ़ रहे हैं, गुर सतगुर का जो सिख अठाए सो भलके उठ हर। ध्याना हुंदा बड़े ध्यान नाल, अखां बंद करके बोल के सुनना। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावे, ऐ पूरा क्लीन अप हो गया। फिर कहिंदे नितनेम करो, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, ते सारा दिन की करे, काम भी करना, तुसीं वाहिगुरु बोली जावे, फिर बहिंदे आ उठदे आ हरनाम ते आ, जो स्वास ग्रास ते आए मेरा हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु, सो गुरसिख गुरु मन पा। कहिंदे उहनूं बड़े चंगे लग जाओगे तुसीं जे जपोगे। आओ हां आपां मन्नीए गल,

साहिब जीओ हर जुग जुग भक्तु पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छुड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रूपया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पिया कहो नानक करत किया बातां जो किश करना सो कर रहा सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा कहा सो कर कहा जित वै सर संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परे सो कहिए केते तेरे गावन हारे गावन तुनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र नरासन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोह

संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर पिन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आबाद दे मुझे अबरी है मन काल का त्रास नमरी है हूँ जो सदा हमारे पच्चा श्री है तुझो करो रचा राख लियो मोए रखन हारे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो

नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मोवद कियो कर कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृश कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब

जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी मूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद भेद अरालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संब ताका मूड चारत भेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पान अनुमानत मा मूड कछ भेद न जानत।

तोए तेती तुमरा लखान जाए पसारा कहवत सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंग पे राव के भूपा अंड जेर से तिजकिनी उत्पज खान बोल रजदीनी कौ फूल राजा वह बैठा कौ सिंह प्यो शंकर कैठा सिगरी सिष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वंभव।

रशाओ ताय सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय नार्यो ताके ताप तनक मोहर्यो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताय उबारा।

सर्व धर्मो सहाय दुष्ट दोग ते लो बचाए कृपा करे अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किलमिक सकल देह को हरता दुष्ट दो कियन को जय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल सुने गोंग जो जाए सुरसना पावे सुने मूड़ चित लाए चतरता आवे

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सतर हमारे मरिय देख देख जग में दो चले राख्या मोहे ओ न दल।

तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तो है। अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहे मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ बारो, अमृत सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो पावत को त्याना, बौर करो कविता विद नाना। किसन जथा मत चरित्र उचारो, चूको ए कब लो सुधारो, कब बाच दोरा। जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहो जग माहे। जो ते प्रभु को त्याए हैं, अंत स्वर्ग को जा है दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किश कछ न्याय ना है। जलते उपजते रंग ज्यों, जले बिखे समाहे दोहरा। जब इस प्रभु को पियो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सबहू कैद सुनाए। काव्य बाच दोरा।

0: यस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना
1: अंगीकार हु करे तेरा कार्ज सब सुवारना सब नाम गलां समरास स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करदा तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्यावा जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा उधार हो साज नाम उधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया वड्याइया कह नानक सुनह संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तिद कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तो जिन काओ से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हो तिद कर अनहद वाजे आनंद सुनहो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो

तन मन थी वह हरिया पौड़ी, जिथे तुम समराथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम कै दूत नाए, तेरा छड़ जाहे। भौजल

सृष्ट सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है

शिव रहो सृजनहारो, तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला, हवारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल, देहो सज्जन असिसड़िया जो हो वै साहिब सिउ मेल। कर कर पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छह कर छह गुर छह उपदेश, गुर गुरे को वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख उड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पैरा, थिती वारी माहो होवा, सूरज को रुतनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन मैं थाल रव चंदीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मलियान लोपन चवरो करे, सगल बंदराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पौखन्ना तेरी आरती, अनता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद विमलन एक पद गंध बिन, सहस तव गंधे चलत मोही।

राह गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा काम क्रोध नगर बो भरया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है।

करहो पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा, रहाओ इहो आकार तीरा है तारा, खिन में बिनसे करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया, कहत नानक मार जिवाले सोए, ऐसा बुझो पर न भूलो कोए, भैरों।

पूर रहो सर्ब मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा। सारग मुहला पांजवा बलहारी गुरदेव चरना जाके संग पार ब्रह्म ते आई है उपदेश हमारी गत कर न रहाओ। दुख रोग पै सकल बिनासे जो आवे हर संत सरण आप जपे अवर नाम जपावै वड समरथ तारन तारना। जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे को सुबर भरना हर दासन की आग्या मानत ते नाही पुन गर्भ भरना। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरना जाको पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरना। हर रसे अगाने सहज समाने मुक्ते नाही जात वरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरना। सारग मुहला पांजवा गायो री मैं गुण निध मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ। संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दरस देख नैन रंगा मोह लोभ मोह टूटे परम पंगा। कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परम आनंदा। सारग मुहला पांजवा घर दूजा एक ओंकार।

कैसे कहो मुहे जी वेदनाय, दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर, मन न रहे बो विद उमकाई रहाओ, चेतवन चेतो प्रे प्रीत बैरागी, कद पावो हर दरसाई, जतन करो हे मन नहीं धीर, कु है रे संत मिलाय, जप तव संजम पुन सब होमो, तिस अर्पो सब सुख जाई, एक निमख प्रिय दर्श दिखावै, तिस संतन कै बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती, सेवो दिन रहनाई, मान अभिमान हो सगल त्यागो, जो प्रे बात सुनाई, देख चरित पई हो बिस्मना, गुर सत गुर पुरख मिलाई, प्रभ रंग दयाल मोहिहा ग्रह मैं पाया, जन नानक तब तब जहाई। सारग मोहल्ला पांजवा। रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक घोर मैं उर्द तप करता, निमक निमक गुण गाही, रहाओ अनक जन्म भरम तो ही आयो, मानस जन्म दुल पहाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो, तो लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रहना, नेफल कर्म कमाही, कण नहीं तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो, और जपर्यो कुस माही, धर्म राय जब पकड़ सबरे, तो काल मुखाय उठ जाही, सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलहारी, जो अलप रहे मन माही। सारग मोहल्ला पांजवा। क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिचरत होत मृत का, ग्रह में रह न पाई रहाओ, जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुहे अपने, प्रभ मंगल गुण गाय, चरण संतन के माथे मेरे, ऊपर नैनो धूर बंछाई, जय प्रसाद मिलिए प्रभ नानक, बल बल ताके हो जाई। सारग मोहल्ला पांजवा। वा औसर कै हों बल जाई, आठ पैर अपना प्रभ सिमरन, वड पागी हर पाई रहाओ, पलो कबीर दास दासन को, उत्तम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी, ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकर बाणे आई, जियो पिंड तन धन साधन का, ए मन संत तेरे नाई, संत प्रताप भरम सब नासे, नानक मिले गोसाई। सारग महला पांजवा। मनोरथ पूरे सतगुर आप, सगल पदार्थ सिमरन जाकै, आठ पैर मेरे मन जाप रहाओ, अमृत नाम स्वामी तेरा, जो पीवे तैसी त्रिपतास, जन्म जन्म के किल बिखनासे, आगे दर गए होए खलास, सरन तुम्हारी आयो करते, पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश, कर कृपा तेरे चरण त्यावो, नानक मन तन दर्श प्यास। सारग मोहल्ला पांजवा। घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कहा लभाइए आन को, ईत युत प्रभ सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरखन की, मने अतारन मान को, खोज लेहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को। सारग मोहल्ला पांजवा। मन सदा मंगल गोबिंद गाय, रोग सोग तेरे मिटे सगल अग, निमखी हर नाम त्याय रहाओ, छोड़ सियान बहु चतराई, साधु सरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख भंजना, जम ते होवे धर्म राय, एकस बैना नाही को दूजा, आनन बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए। सारग मोहल्ला पांजवा। हर जन सगल उधारे संग के, पह पुनीत पवित्र माना, जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिन स्यो गोष्ट से तरे, बूढ़ दकोर आंध कूप मह, ते साधु संग पार परे, जिनके भाग बड़े है भाई,

देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे। कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन मरण पहला ते। सारग महला पांजवा रे मूड़े आन काहे कत जाई संघ मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस स्यो रुच नहीं राई मोहन स्यो बावर मन मोहयो झूठ डगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यो बन आई सगल निदान करे मैं पाए को नानक जोत समाई। सारग मुहला पांजवा ओ अंग प्रह प्रीत चीत पहलरिया जो तो बजन दियो मेरे सतगुर तो मैं साज सिंगरिया रहाओ। हम भूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर धीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर कृपाल नानक हर मेले ओ तो मेरी सूख सजरिया। सारग मुहला पांजवा माना ओए दिन सतन परवाना सफल ते करी संजोग सहावे सतगुर संग ज्ञाना रहाओ। धन सुभाग धन सुहागा धन देत जिन माना ए तन तुमरा सब ग्रह धन तुमरा हियों कियो कुरबाना। कोट लाख राज सुख पाए एक निमख पेख दृहटाना जो कहो मुखो सेव के बैसी है सुख नानक अंत न जाना। सारग मुहला पांजवा अब मोरो सहसा दुख गया और अपाव सगल त्याग छोड़े सतगुर शरण पिया रहाओ। सर्ब सिद्ध कार्ज सब सवरे अहंग रोग सगल ही खिया कोट अपराध खिन में खो पई है गुरमिल हर हर कहया। पंच दास गुरवास गत कीने मन निश्चल निर पिया आए न जावे न कत ही डोलै थिर नानक राजिया। सारग मुहला पांजवा प्रभ मेरो एत्युत सदा सहाई मन मोहो मन मोहन मेरे जी को प्यारो कहवा कवन कहाँ गुण गाई। प्रभ मेरो एत्युत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहाँ गुण गाई रहाओ।

पार रहाओ। जब भूखो तब भोजन मांगे, अघाय सुख सघारे तब अरोग, जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवार। कमन बसेरो दास दासन को, थाप्यो थापन हार। नाम न बिसरे तब जीवन पाइय, बिनती नानक के सार। सारग महला पांजवा। मन ते पै पो दूर परायो, लाल दयाल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाओ। गुरबचनात कुमात कृपा ते, बोर न कतहु तहायो। रहत उपाध समाध सुख आसना, भगत वछल ग्रह पायो। नाद बिनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो। करना आप करावन आपे, ओ नानक आप अपायो। सारग महला पांजवा। अमृत नाम मने आधारो, जिन दिया तस कै कुरबान। गुर पूरे नाम सकारो रहाओ। बुझी तृष्णा सहज सहेला, काम क्रोध

पदार्थ पयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करो प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे, आठ पैर गोबिंद गुण गावे, जन नानक साध बल जावे। सारग महला पांजवा। जीवन तो गनिए हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मन मोहन, फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत कछ शांत न उपजित, बिन विसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे काले खां। जाके रास सर्ब सुख स्वामी, आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूर्ण अर्थ बसेखा। सारग महला पांजवा। सिमरन राम को एक नाम, कलमल दगल होए कलमल दगद होए, खिन अंतर कोट दान स्नान रहाओ। आन जंजार बिरथा शर्म कालत, पूर्ण बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूट, जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर, कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै, बिन सजाए अभिमान। सारग महला पांजवा। धूरत सोई जे तुर को लागै, सोई तुरंदर सोई बसुंदर, हर एक प्रेम रस पागै रहाओ। बलबांच करे न जाने लाभ, सो धूरत ने मूड़ा, स्वार्थ त्याग असार्थ रचियो, न सिमरे प्रभ रूड़ा। सोई चतर सियाणा पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जपियो, नानक सो परवाना। सारग महला पांजवा। हर हर संत जना की जीवन, बिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। सांचन नाम राम नाम तन रतना, सांचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन। हर रंग रंग पै मन लाला, राम नाम रस खीवन। जो मीना जल सिव उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन। सारग महला पांजवा। हर के नाम हीन बेताल, जीता करन करावन तेता, सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा, बिरथा काटे काल, जब जम आए सिंगारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख लिहो दास अपने को, सदा सदा कृपाल, सुख निधान नानक प्रभ मेरा, साध संग धन माल। सारग महला पांजवा। मन तन राम को ब्योहार, प्रेम भगत गुण गावत गीदे, पोहत ने संसार हाओ। सरवणि कीर्तन सिमरन स्वामी, ए साध को अचार, चरण कमल अस्थित रिद अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपने तार, नाम निदान उचरो नित रसना, नानक साध बलहार। सारग महला पांजवा। हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहे सिरधर ठाकर, मिलते अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम सो प्रीत ना लागे, अनक भेख बहुत जोरी, टूट दबार न लागे ताको, जो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजे, मन खचत प्रेम रस खोरी, नानक दा तेरी सरनाई, प्रभ बिन आन न होरी। सारग महला पांजवा। चितवो वाह अवसर मन माहे, हुए कतर मिलो संत साजना, गुण गोबिंद नित गाहि रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहि, पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहि। जब तब संयम कर्म सुख साधन, तुलना कछ वैलाहि, चरण कमल ठाकर मन बेदेओ, चरण संग सुमाहे। सारग महला पांजवा। मेरा प्रभ संगे अंतर जामी, आगे कुचल पाशे खेम सुखा, आगे कुशल पाशे खेम सुखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा, गुण गोपाल हर राया, बिसर न जाई निमख हिरदे ते, पूरे गुरु मलाया। कर कृपा राखे दास अपने, जी जंत वस जाकै, एका लै पूर्ण परमेसर, पौनी नानक ताकै। बिसरन जाई निमख हिरदे ते, पूरे गुरु मिलाया।
कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाकै एकल पूर्ण परमेसर भौनी नानक ताकै सारग महला पांजवा जाका जाकै राम को बल होए सकल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख न व्यापै कोई रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवां तिस सोए उद्यम करो दर्शन पेखन कौ करम प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानके अपने को चरण जीवां संत धोए सारग महला पांजवा जीवत राम को गुण गाए जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ मन तन धाना सब तुमरा स्वामी आन दूजी जाए जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पैना खाए साध संगत कै बल बल जाए बोड़ न जन्मा तहाए नानक दा तेरी सरनाई जो भावे तिवे चलाए सारंग मोहला पांजवा मन रे नाम को सुखसार आन काम बेकार माया सगल दिसे छा रहाओ ग्रह अंधकू पतत प्राणी नरक कोर गुबार अनक जोने भरमत हार्यो भरमत बारंगबार पतत पावन भगत बछल दीन कृपा तहार कर जोड़ नानक दान मांगै साध संग उधार सारग महला पांजवा विराजत।

व्यासा चुके सोग संताप गुण गावत अच्युत अविनाशी मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संखाप भगत वशल पै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग मोहल्ला पांजवा आतर नाम बिन संसार त्रिपतन होवत कुकरी आसा इत लागो बिख्या चार हाओ पैठ गौरी आप भुलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निम

डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ मेरे हीरे रतन नाम हर वसिया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा वाहे गुरु साहिब जियो।

ए बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे, सज्जन सच्चा पातशाह

जिसके अंतर से निरंकार जिसकी सीख तेरे संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानक गुण जन चन प्राता करो बेनती पार बम सब जाने अपना किया आपे माने आप है आप करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा भाव से आन सगल दे रहत सब किस जाने आत्म की रहत जिस भावे तिसले लड़ लाए तान तनंतर समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अरलो मोह विनिश्चय अमेव नानक प्रश्न अगति कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याय त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लवावे जय प्रसाद सुसे जी जय मन आड़ पैर तागा जस गा विजय जय प्रसाद तू सबको माने मुख ताको जस रसन मखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्राप्त जी जब दर गए मान पावे नानक पद से ती कर जावे जय प्रसाद रो कंचन दे ही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जिस कहत जय प्रसाद तेरे सगल सिर ठाके मन सानी पर ठाकर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको नाम पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जय प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय प्रसाद असो हस्त सवारी मन ते प्रभु को कबू नाम सारी जय प्रसाद भाग मिलक धना राग प्रोहे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक लखे इया नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आड़ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार व्यवहारी तिस पर को सास साज तारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नान जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्मान जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सजे बसना जे प्रसाद हस कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुसह समावे ऐसा प्रभु त्याग गर्व कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो सार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाव जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू दास राज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल निवास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभ तेरी मैया

जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की आचर्य कथास्पदी। साध के संग मुख जलोत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होतन मेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कतूं तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापनीत, साध संग कस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग नाई को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाई अवताप, साध के संग तजे सब आप आपे जाने, साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त गोचर लहे, साधु कै संग आजर सहे, साध के संग बसे थान उचे, साधु कै संग महल पहुचे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साज नमीत कुटम ने तारे, साधु कै संग सो धन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम नान, साध के संग सबल जन्म, साध के संग नहीं किस काल, दर्शन भेड़ होत नियाल, साध के संग कलूख तहरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इया वहां सुहेला, साध संग मिश्र तर मेला, जो इच्छे सोई फल भावे, साध के संग बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद वसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मंते विसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे परम मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हिमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जाने, जे तसने ते तब खियाने, साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे किस बिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अश्परी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजे ज्यो बसदा को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का एक नाओ नान ज्यो पाव का सह सुहाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगा जैसे तारे उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ, ब्रह्म ज्ञानी ते किस बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृश्यमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरियास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सबल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम उधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत,
ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन मखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता

चले। आशपति जिसके अंतर राज मान सो नर्क पाती होवत सुहान, जो जाने में जोवन बंद सोवत विष्टा का जनते आपस को कर्मंत कहावे, जन्म मरे वो जोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इया मुक्ता के सुख भावे तनवंता होए कर कृपा वे तृण समान के संग न जावे, बहु लश्कर मानु को पर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सावते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे मान सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे अवतारे शर्म पाए सगले बिरतारे, आनक तपस्या करे अहंकार नक सुर फिर मेरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगह को कैसे गवे, आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे, सर्व की रेन जाका मनो ए कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लजाने मुझते कछ होए तब इसको सुकुना ही कोए, जब ए जाने मैं किश करता तब तबला गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मी तबला ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तबला धर्म राय देश जाए।

रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समा इसमाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रगा सुखदाय विश्वास सत नानक गुरु ते पाए सत वचन साधु उपदेश सत अंजा के हृदय प्रवे सत निर्द भूजे जे कोए नाम जदा की गत होए आप सत किया सब साथे आपे जाने अपनी मेहत गत सुकड़ने हार न बूझ करत विचार करते कीमत ना जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वरतिया विस्मन विस्मय विस्मा जिन बुझा तजाया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे वधा दे तू काट नार जाके संतरे संसार जन का सेव सोवड़ भागी जन के

को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालनहारा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे। अपने दास को दे बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप पत राखे गुरपंता की गत में कोई न रखे। प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिश बढ़ाया निक्की गिरी में काल रखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काटते आप ताको राख देकर हाथ। मान जतन कर्तव्य भात तिसके कर्तव्य वृथे जात मारे ना रखे अब न कोए सब जिया का राखा सोए काए सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रवलख बढ़ानी। बारंबार बार बार जपिया पियम ते मंतंत्र पिय नाम रतन जिन गुरु मुबाया तिशके श्याम ना इंदिष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकार नाम का संग।

आत्मा ले गुरु वचन ही हर नाम उचरे। सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते हटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे गुरु का सिख बड़भागी है। सतगुरु सिखा हलत पल सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे। गुरु के ग्रह से उपजो रहे गुरु के आज्ञा मन में सहे। आप सुखो कर कृष्णा जना वे हर नाम हृदय सद्यावे मन में सतगुरु के पास ते सेव के काज रास। सेवा कर तो नेकामी दिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे। नानक सो सेव गुरु की मत ले भी सुस्वे गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस दे हर नाओ अनगवार गुरु को बल जाओ। सर्वधान जी का दाता आठ बहर पार रंगराता ब्रह्म में जन जन में पार मम एक आवने एक भरम। सह सियाण बुलया ना जाइए नानक सा गुरु बड़भागी पाए। समल दर्शन पेख मनीत प्रसद चरण गात निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे परम पार की दरगह गवे। सुनकर बचन करन अगाने मन संतोख आत्मपतिया ने पूरा गुर आख्यो जागा मंत्र अमल दिष्ट वेखे। वो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे चलय मिलाए। जे भाए कुस्त अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काउ बोल न पहुंचत प्राणी। गम गोचर परम निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किरण पाई। अनक भगत बंधन नित करे चन कमल हृदय सिमरे। साध बलिहारी सतगुरु अपने नान जिस प्रसाद सब प्रभु जपने। और अस पाव जन कोए अमृत भी अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरकार

जब अकारे कृष्णा दृष्टा पापन तब कहते हो तब जब धारी आपन सुन समात विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेन न जब तब हर शोक से व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तमो कहा किसोत भरम आपन खेल आ वर्ती जा नान करने हारन दूजा जब होत पर केवल धनी तब को किसको गनी जब एक रगम

जिस प्रसाद सजग तराया जन अवन गाये स्वाव जन के संग जदावे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक दिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जागा नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ वशपति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेक साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरे चिंद आस नित तिरग त्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोट बेनती करो सा संग अग्न सागर तरो हारदन के परले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद रस पियो चचित नारायण एक एक रूप जाके रंगन एक गोपाल दुख।

रसना कहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रधारी नानक ने भी खेप मारी प्रके उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो निधान सब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोहे सब दे उच पाए स्थान बो न होवे आवन जान अर्दन घाट चले जन सोए नान जिसे प्राप्त होए।

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जान है मन कोए मन सुरत होए मन बुद्ध मन सकल पवन की शुद्ध मन मोह जोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जान है मन कोए।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाख सार असंग मोले लाए तार

कुवात सहस्य अठारह कैन कते बासुर एक तात लेखा हुए त लिखिए लेखा हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आप जाने आप सलाहे सलाहे ते सुरत न पाइया नदियां ते वाप वै सुमद न जानिए सुमन सा सुल्तान गिरह से ते मालतन कीड़ी तुल न होने जित सुमन हो न विसरह

जत पहारा तीर सुनियार अरण मत वेद हथियार पाओ खला गंतवताओ भांडा पाओ अमृत ताल कड़िया सब सचे।

Nikarvika Namikarvika Adandhe Abandhem Nirbuja Asuja Kale Jale Lahenja Enantem Antem Alika Nirsika Nilambhe Zamme Gamme Jamme Puta Shute Loka Shoka Karme Parme Jita Pita Abahe Gahe अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रजा चंद नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमो देव देवे भिखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगे नाते संगे प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंचंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रवंगी प्रमाते समस्ति विभूते कलंकम नाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जोग रेश्रम परम सद्दे नमो राज रेश्रम परम विरदे नमो शर्तपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भेखी परमे भोगी भुगते नमो योग श्रम परम युक्ते नमो राज श्रम परम विद्ये अपेखे अपरमे भोगी भुगते नमो योग श्रम परम युक्ते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शासन नमो पू पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्ते शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सज्जानं सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा में सिद्धा बुद्धा मृद करता दूध हरदं आगम रोग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदासं दाता दयालं शेदि भेदि नामकं समस्तो पराजि समस्तधाम ते राजोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पै हैं प्रभु है जू है देश है भेस है भुजंग प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निधाने नमस्तम नराते नमस्तम परमाते नमस्तम गंजे नमस्तम अपंजे नमस्तम काले नमस्तम पाले नमो सर देशे नमो सर पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर जीत नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिभंगी रंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखी जय पीजय समस्त प्रसिजय कृपाल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वधार हित सदम निवासी चरम शन त्वय प्रसाद अमृत कर्मे मृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खाल धर्म लख कर्म

प्रचंड मित गत खंड लिशा कर्म दिशा धर्म सर्व प्रणांड्या डन बाडिया चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियन नामे आ कामे भुजंग भजा छंद

जाए हैं आ जाए भक्ति छंद प्रसाद के जहर जहूर है के हाजिर हजूर है में सुलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है सुल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है।

लंकन बनास है, समस्तल निवास है, अंगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तल जबा है के साहिब करा है के नरकम बनास है, वैस धर्मवास है के सरोवर गवन है, हमेशल रवन है, तमावल तुम

अनुभव नाज मुन मत प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अंश अंग आसन भंग उपमा पार गतमितधार जल थल मंड दिसमिस भंड जल थल मंत जल थल महंत दिस विच बेअंत अनुभव नास तिरता तुरास जान बाहो एक कैसा ओंकार आद कथनी अनाद खाल खंड ख्याल गुरवर काल

तीर्थ के धरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्व पर है, सर्वकर है, सर्ववासी है, सर्वनाशी है, करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मंड से है, कालखंड से है, परते पर है, करुणाकर है।

सदायांग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तुए प्रसाद सोई है श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के

शुद्ध सुभा दुरंध बा सुसा सुना दुर्जान देंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर हरीन मरोर भुमासन माते दंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरयार विचारे सार के तार पशैया

ब्रह्म मेसर विष्णु सचिपति अंत बजे चंपास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रसय भक्त नर फेर न दे तरेंगे।

गयो पर लोग गवायो। मास कियो बिकियान सुबैठ के ऐसे ही है सुबह बतायो साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।

सिमर शास्त्र भेद सबे वो भेद कहे अमेक न जानियो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तोय बखान्यो तोहरा सगल द्वार।

अकथ की करा कहानी करहा कहानी कथ केरी के द्वारे पाई है तन मन धन सब सोम गुरु को हुक्म मनिए पाई है हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोनी जिने भरम भुलाया माया माया ता मोनी तने कीती जिंट गोली पाईया कुर्बान कीता तिसे बिटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सत समाले कुटम तू जे दे दा चले ना ही तेरे नाले साथ तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चितलाई ऐसा कम मूले ना की चै जित अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत समाले अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया अंतोन पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को आप खाने आखे तो वेखे सब तू है जिन जगत पाया

तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए और किते चरा रस पले ना पाए। हर रस पाए पले पिए हर रस भौन तृष्णा लागे आए और रस करमी पाई है सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए शरीरा मेरिया। हर तुमे जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद वे ता तू जग में आया। रापे माता आपे पिता जन जीव पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया त चलत हो अचलत नदरी आया। कहे नान सिष्का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पिया रब आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोख दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। आनंद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर भोगो। कहे नानक प्रयाप मिलिया करण कारण जोगो।

0: पूजा पड़े कते पा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम न जाए तरंदा मोहला पहला
1: मानस खाने करे निवाच।

पंच दोख और अहंग रोग यह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा ही आरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन पीखियो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीना तिसही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिसही को तीना वेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीना तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साची नवाजी साध संगत वड्डियां भागां वाले होए जे सतगुरु साहिब जी दी पावन पवित्र चरण सरण विच हाजरियां भर के बहुत वड्डे भाग उहनां दे जिन्हां नूं सतगुरु साहिब जी ने अमृत वेला जागना अमृत वेला इशनान फिर दाते ने रहमत करके अपने अमृत रूपी नाम नाल जुड़न दी रहमत की। सतगुरु साहिब जी दे इस इलाही दरबार दे विच सतगुरु साहिब जी दा अज दा अमृत वेला दा इलाही फरमान 716 अंक दे उत्ते टोडी राग दे विच पंजवें कर सुरताल दो पदियां वाला इलाही फरमान शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित जोत सरूप सच्चे पिता पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहिब जी दी मुबारक रसना तों फरमाए हुए इलाही फरमान की बख्शिश होई है। इस इलाही फरमान दे उत्ते सतगुरु साहिब जी ने संखेप मूल मंत्र नाल मंगलाचार किया है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद वो एक है उसने सब नूं इक्को जिहा पैदा किया है। ओदी नजर च कोई वड्डा छोटा नहीं सब एक ने। ओ तेरे अंग संग सहायता कर सकता है ओ परम दुपुत है ओ सदा रहन वाला है कदी नाश नहीं हुंदा ओ बेअंत है उसकी प्राप्ति उसकी बख्शिश गुरु कृपा ना गुरु ने कृपा कीती जो किसे ने कीती ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। सवाल खड़ा किया जाए कैसा गुण साढ़े उत्ते कीता है
ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪੰਚੋ ਰੜਕਾ ਜਾਰ ਕੇ ਰਹੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਵਚਨ ਆਖੇ। ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਹਾ ਲੜਕਾ ਵੇਚੀ, ਲੜਕੀ ਬੀਜੇ ਕੋਏ, ਵੇਚੀ ਕੋਏ ਵੇਚੇ ਕੋਏ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਕਬੀਰ ਸੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਗ ਵਰਜ ਕਰੇ। ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੜਕੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਆ,

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह

इस भुगत गयान दया भंडारण काट काट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो ही कार चलावे है लिखे आवह पागे आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहते

प्रचंड तिथे नाद बिनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरां सिद्धां की सुध

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परिवार परियां।

सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। इहो तिन कै मन वसिया जिन तुरह लिखिया आया। इक फिर कनेरी करह गल्ला गली के नै ना पाया। कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित सिओ पवित संगत

कि कर्म कमाया तुद सरी राजा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहु शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो

फिरे अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाव सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया

दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो, सोही महला पहला, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सीन,

0: कितनी हाजरी कुर्बान करनी। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हां सत्कारयोग ज्ञानी दलबाग सिंह जी, मुख सेवादार गुरुद्वारा साहिब फरीदकोट, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, ज्ञानी बलजीत सिंह जी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ा ही रस भिन्ना कीर्तन आप संगत नूं सरवण कराया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ हुण मैं बेनती करदा सत्कार जो भाई लखविंदर सिंह जी, जो पंथ दे महान विद्वान अते जिहड़े साडे शहीद परिवार आ उन्हां धीआं भैणां दे बच्चियां दे भी कार्ज करदे आ, हैल्प करदे आ। सो आओ उन्हां तों कथा विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

निगम उदरण जरा जम ही आरोहे गुर अमरदास थपियो पर कामी तारन तरन अग अंतक बदना।

पाणी सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भई अकाल के, सब सिखण को हुक्म है।